आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर।

0: में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है।

0: गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सुयश सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
1: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
0: गैलेक्सी आई के सीईओ सुयश सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
2: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
1: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में, खासकर दक्षिणी हिस्सों में, वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
4: बंगाल की खाड़ी में बन

0: के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनडीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनडीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के

0: प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बाद में श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के शीघ्र पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 5 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ আকাশবাণী বিলোনিয়া। শুরু হচ্ছে আপনাদের সকলের পছন্দের গানে গানে অনুষ্ঠান। গানে গানে অনুষ্ঠানের আজ প্রথম গানটি শুনুন হাম সাথ সাথ হে ছবি থেকে। গানটি গেয়েছেন হরিহরণ, ঘনেশ্যাম ওয়াসওয়ানি, প্রতিমা রাও, সন্তোষ তিওয়ারি। গানটি গীতিকার রবীন্দ্র রাওয়াল।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े

0: राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में प्रधान को अपने दल का समर्थन देने की घोषणा की। पुलिस ने बताया कि प्रधान के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रधान का नाम 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े कई मामलों में है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते पर वार्ता को गति देने के लिए बैठक की। श्री गोयल ने भरोसा जताया कि साझेदारी समझौते के जल्द पूरा होने से आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने तथा भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। भारत स्थित स्वीडन के वाणिज्य मंडल के नवीनतम व्यापारिक सर्वे में भारत को 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सर्वेक्षण विदेश में कारोबार करने के लिए स्वीडन की कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोह स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী বিলোনিয়া এখন শুনবেন দেশাত্মবোধক গান দেশবন্ধুর অনুষ্ঠানে। শুনবেন বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে।

मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कल्याण मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। पहली बार जिला स्तर पर श्रम बाजार के विवरण जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-2026 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। विदेश अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने की बैठक की। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवनीतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागा में हो रही है। मनु भाकर और तेजेंद्र पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस एनीटाइम।

0: That was a short film on the features of the National Green Tribunal mobile application, and the plenary session is packed with the delegates and domain experts and legal luminaries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं.
0: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी.
2: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यहां हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है. अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है. मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है. इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है. यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है. विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा. भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है, और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए. हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी

0: दुनिया के सामने रखा है, इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: अब यंग आने यंग बखाक तीस हजार लिया नहीं अब मगे हैंग का नहीं दो आको है के नंगो सिनी जो तो निस्लाई सकांग करंग होनाई आने कामिनो रुक सबोई कोक्तांग है कब कोकलो नंग वो सनान मगे बेलाई खातों में चौंकना है मातों को Belai hambai.
2: Hambai channel. Angkau bukan kenari channel. Kita korang mau terong tang panu anu nak
1: kasi. Dah sadi.
2: Ani. Problem ni umum. Ani kami. Ani kami le. Asli kenai cok. Tawat terong cok. Hatai coro coro. Ayang uyang. Tak lom dodot. Dai ni maju lo jawa hai bay.
1: Ba.
2: Asli hatai. Anu lom ma bay. Ani kau coba. Bisijorani ter kop hai kai bo awan bang ei rok bo bag lai cha lai yo hang jak peng jak was kung go dai mot nong khoro khoro peng jak bag ei cha lai yo munei lai yo ka ham ham ya seng lai yo cha lai yo do li wo tong ei kam bi wo kai bai a sari tuk no wo asuk dra
1: ขอมอราดก็ตั้งนึกว่าตั้งเลยมาอยากพาต่อแท้ตรงตุ้ยมาอยากพาแท้นึกว่าเอาอันนี้มาพาแล้วเมื่อใดเจอทำสายไปมาพาตรงวิเชียร์ใจจริงมากกว่าอันนี้การมีชีวิตอังหาละสูง Belai ke kena toka, nini. Ani kami no loboi neng si mani. Nino sejak no neng tishawi tondi. Man kangke ulas halsa sek sinor tuwir fadita do. Belai hambai no belai kena toka, nini koglop. Belai hambai. Aw, kapang ni mari kising. Ani kami. Kami ni kog sakangke. Kubi no, lang marok. Biang makamai thang sabono mujuman ang semenya kabune marikisin. Tamzani usudiwa asugui kok sawi tong phano. Kamini a hatai, kamini a bufang wafang, a hasuk besati himi lai thang mani. Sekango asu asu isongno, kuani tui kogui, golawai klai, rekaman luk mani.

0: आओ आओ आओ आओ आओ बिजुस्ता ई द द द सादी हया सा सादी सा से सादी
1: आनी कामी औरो तंगो बुखांग वफांग तोखा तोखी मुथाई तंगो अरे पान और आवार माइगुराई खांगे बाहाई मोटों सहोरे बारा बाहाई सहो तंगो इमा तीखा गडाल तंगो आठो याकुं मिनांग तंगो
0: ขนาดตัวกระตานินมั้วบ่เบลัยฮัมไบบ่สกังนี้ซาซาลองกังเกนอร์นี่ขาสุกซะอาอุชาไฟไนกังเกอาฟรูฮังกังเกนอร์จีนีซีนีมูซีนีฮุกุมูโดจีนีฮุกุมูโนเตยนอร์ซีไบดิตา दो आफ्रो दो आको है के बेलाई हम भाई हम भाई आओ खबर ने मार की सिंग सिंग खोरक ताम निकुक तेरी खना लग गया बेलाई नो खना तो क्लाइनाई साबा गया आओ नर का से क्लाइनाई सीना ने रंग बैठा सकांग इसलाई नर ने सीमा रोक टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ने का अंक वन सुग मनी अंक से अनेक कामिनो हमजा कुक ना हमें नहीं नरनी ककतांग नरनी कोकलोप खनावई बा नरबो नरनी कामिनो आसु खायने हमजागु यांग सिमना बखांगनि वाकिति बव बिन कामियो कामिनो आसु खायने बलाई बुसिका खुमनि माजिलता बहाय हनेने बा यांग बिसुराय जंपई आमजानि बव साहौका माय खखरां खखरां खलाय हांजो कबन साइतंगो हनेने आयं ख्वाइनि वारिंगटनि पिजोस साहौका बवहायनो आथुक्सा याथेकनि कक सोसावि आसे ख्लाइने नरं नरंनि कामिनो लब छौइ सिनारं बायो बेलाय बेलाखि नरनां हामबाय ताइ सिनि किसिं संग्रो थांनाय हाथि अबो गबां मानो क्रङि मान होयाङि खा हामियार अङि थमाय हनियां खनाका तिनिबो नरक बाय खरक बुसुक बाय क्रङि मानो आं सेमानिया सें जरा खाजाकनि बागै खाबोंनि मारे किसिं आव हाइफानो औ जरावनो आं साइटकनाय नरक बाय गोरोंनानि बागै नाय नरनि जत्तनि खानि कक खानानि बागै आं अरतङो खाबोंनि मारे किसिं नरक आं मै गोरों हरदि 03812326253 कक दुक नम्बरनि बिसिं दै नरनि खानि कक साहरदि नरनि खानि कक नंखा आनि कामि आनि कामिनो लब छाउई नर ककतां कगलब सैमानि हे दिबा आव नायगरना हाइके ओजरो साबतं हेलो
2: हेलो
0: आव फुंकहाम
2: फुंकहाम दरानो ब
0: आव बेलाय फुंकहाम
2: आं बिदि बाजारनि
0: लखि आव बाहाय तं लखि नों
2: आं दाबो काहाम न
0: हाम कनाब्ला नों
2: नक ने बिशिंग बो नक खबरै देस ने बिशिंग बो देस स खबरै सिनि कामि ने सिनि कामि हाय नायथो केब ने थाने बो खबरै पारा फांग पाराया फांगो ओय कामिया फांगो खेंगरा बार बुबार काजा

0: हासुक बेसनी कामियो संगले तंगजाओ जत तोनो बायापसारी कथा लाई रंगसक हा आनियो कामी नुनांग बाहे के पोगी मनाई नंग बाई जेसक हाक्साल थाना नाइबो आनि खाले साले थांगी मनिया तामनि हनके आओ कामिनि बुफांग वाफांग तक्सा तोलवा पुमना खरांग रग्न आनु आनि खानो सतन हरो नाइन खापने मारकेसिं ककदगो साबतंगपि हेलो
1: আমি বই পড়ার ইংলিশ রোগ পরিমাণ

0: आओ खबरें मार्केटिंग नोर खनाई चंगो सरसा पॉइंट डॉक मेगाहर्जो एफएम उज्जैन तो खपांग यक्राई पांडा नोर खनाई चंगो ताई चंगो नोर बॉय नोर निकिसिंग अंग कुंजो तिनियो आओ कोक्तांग कोकलोप आनी कामिनो लोप छावी नोर सीमानी कोक्तांग कोकलोप डॉक खनाका बेलाई खाक्संखा आओ नाई फ्योन है के ओजरो कोक दुगो सवतों की हेलो हेलो करंगी मान लिया हेलो हेलो खरंग भैया नि दोंग निनि हेलो दो सागरादी साबंखा
1: आमा तोमलो सारा
0: ओ साबंखा दो सागरादी
1: सचिन दो ब्रह्मा पाइलाबांगाने
0: ओ सचिन पाइलाबांगानि वाह हगे सचिन नंगबो तिनियो कक्तांग हे कक्लोप तांग सा सासिनाय ना कामिनो तुय ए
1: सासिनाय सार
0: बा
1: उदेब काम काम साइथंग मजा
0: नंग तो तिनियो कक दुक तुय लाइन माने कक दमा सानो मा सायन जों तो वाना जाम मारन खनांग सेमनु
1: ए वाना जाम मार दकांग कक कक दुक दय हर माने सार
0: दो सागरा सिदा क हे सागरा सिदी सागरा सिदी
1: सानो देनाय दलाके सामबाय तो सानो
0: दा
1: अरे
0: बक पक मस बलफा द सादिया को हके सचिन
1: आं काचस
0: न
1: कान न तिनु
0: सादी
1: चीनी कामिला ayang keto awar mal kharang la mai wak sak kharai nobar mo ga hatai hatai song robot aja kharang la asukam sangai tong ko ni kami do ni mai ya ang la jadi sebab no ini kami hai ini Asur telah tani, Langapan tani, Mekan tani, Mua sini kan, Ngai maya, Sini kan, Lepas ngak, Asukat, Mami kumbay ya, Tunggu tongbay ya, Tahu isya bay ya, Ayang kuai bufang bo, Tai taja permurala, Bupangbo, asalkan macam mana? Bayar, kul bayar. Naya ini macam bayar, bila asalkan tongto, asalkan tato,
0: asalkan tato.
1: Ini kami no, asalkan bayar. Asal dorang sajin sah.
0: Wah, kena toka, kena toka ni mabo, kena toka, kena toka. Belai hambai jo.
1: Eh, hambai sah.
0: Hambai, hambai. आओ हके नदी खरक्सा खरक्सा सीमानी बुसुक से फेरलाई जत्न साग सांगनी कामिनो तैनाय सिलायो आओ ओम हेगा सीमानी बाय आओ नरनी वन सुमा ताई कामिनो हमजाकमानी बहायनो यारंग तेबो कुथु मुंगी थानाय आओ कामी ओम हेनो कामी आरो खाकसांगमा मानो आ कामी ओ थांगांगके ब्यारै खांके जरार बाहेके लाइथां जरा बहुरव लाइथां सिसि सिस्लाबिया कामिनि तमुं तमुं अमहायनो आव नायग्रना हेके तै कैसा कक दुगो साबतम फि हेलो
2: हेलो दिबर कहामदारानो खुलमुंग याफारो
0: आव दिबर कहाम
2: आंग्यांग किपचन्द्र पारने रविन्द्र देब्रमा
0: आव दाको
2: Ini nih kami no tuyai saya jomona. Kami busuk senai kau. Ani kau saji ni sawi sabai ani kami busuk senai kau. Yang nasi gibo ani kami no mang muju maharo. Ani kami no saji ni sawi sesabai ya. อกถ้าต้องมีรีปุงไม่บอกขนาดออกมานี่รู้สึกแ
0: ซ่
2: นายชะตอกตอกชะตอกเป็นขรังตอกชะตอกไปขนาดมานี่รู้สึกแซ่ต้องทวีคาบาทวีรู้สึกแซ่ป่าละในบอร์ดอกรู้สึกแซ่คนดูการจอมไหลคาบังรอกสร้างเลยก็ห้ามก็ต้องไหลโอกาสมีว่าข้าสร้างไว้อันนี้การมีคืออันนี้การมีแล้วก่อนเจ็ดสิอันนี้การมีนิมงตะเกศิปสันรปาระศิปสันรอาศัยมณีบุมุงปุยละบอนอการมีขลังโกศิปสันร
0: อเอาเวลาอีกขนาดต่อค่ะ
2: คือเอเยาวนาอาศัยตัวยดารา
0: เวลาอีกหัมบายก่อนนุนุโบ
2: dara
0: saya kena
2: seri dara
0: iya belai hambai kena toka nin bo seri tai bo seri nyarang nai
2: dara
0: no
2: iya
0: au oke kami bai chang ni kami ini haduloi kami ni toksa tolwa umani koran kami ono mano mami mai chang mami watlok mami hangarOkami no borok pogimano haja, borok pognen mungsa lama kere. Ja kami, abo doli bay haksal. Ja kami doli bay hai kaba aguli bay haksal. Fiaba a kami le ani kani belai ganawo. Aw, nai fi nai jorate kicha toma ba kogdugo sabotom ki.Nae nako. Hello. Hello.
3: Hmm.
0: Aau, Dipor kaham.
3: Ini kami ni moko kalai maro kawinai apa kaka.
0: Hmm.
3: Moko aja mo kaca ni cukup nama ni.
0: Hmm.
3: Asal kai tong mane kai tu hai ko nama tong ro bai.
0: Hmm. Saklaksi jora asuk bang thalia. Jora asuk bang thalia do.
3: Ini parane nana tabura. Pura segerang, pura wakerang. Pura segerang, pura segerang wakerang. Tabura wawo langgata kuntui. Nana kai horo yang tui. Lunga pokro hati kai mani. Hori tang koyo yang tui.Nana tabura, nana wam, tabura wama ni langgatan kutui, nana ke horo yang tui. Yabri heleng, kota yabri, nana ni yabri, nana ni. Iman lama. Tok sabiari, pantui sekagui, nana no sekang layu.Ani tabura, yago takuku. Wama wakereng wawo, sima sikereng suyo. Ini kami, nana tabura. Neneke tongtuk. Agini dino, majikon saya, tabura kauruk kumayu. Kami kumoktai. Nana tabura, kumoktai no wansu kujumang kakai. Kapa kioro. 어성 사진을 받고
0: 응가 네 하나 더 가 하나 더 가 님 먹어 하나 더 가 이 모헤카이 이 사브이 스디 스디 스디 스디 타이보사나이 이
3: ตอนที่ว่าตุมาไปได้จากคงได้พลังไปไปไล่แค่กระดำจ้าอาวันนอรงยารงยูพันนะเฮกันก็ขายมาสั่งอยู่ไปทำให้รู้ก็ทำไปทำไปทำไปอยากก็ทำไปเอาคำว่าในมาเลกิสิงคำว่าอยู่ที่นี่ไม่ชูฮุกนี่ดอรมไปถ้าชูมูอมรกรึงจ้าฮุกทั้งกันเกอเอา
0: Hook bolong halong orai musing nimbahai. Sini kami ni langma arno gedalja kami ni borok ni. Aw kakosong kesang kesang simple sorol nih layu. Awak hanya borok ni beka. Rang se keringi mano hai pun bekale genang se. Nok hook se hamiangi mano bekale kaham se kami ni borok ni. Mohon bagi no kapung ni mari kising. Kami ni tomung samung rok no seng no kak sang mari mano. Seng no fresh air no bar kaham ri mano. Au, na yang nanti ke siya kok dugo sabo tong fi. Hello. Hello.
4: Aap cik cik cik cik.
0: Kerengi man liya. Oke. Au, yang sini, studio ni, Jara khoga bahay no, diporni damsi nui tai shoti nisi tham unlaha. Diporni damsi nui shoti nisi tham. Hake khapang ni mara kising. Tini usung kok sai chong layo hake ba kok tang kok lop khanai chong lakya, khana lakya. Ani kami, sak sak ni kami no lobu inay norak sahimani kok tang kok lop rok khanaka. Asa khlai nai khak sang kha asa khlai tong thoka ang, norak asa khlai nai sinya rungmai mani bagay nai. Abo, Koraksa koraksa ni kanaka hangke taibu kanana musungo. Kowi kowi no. Kowi kowi no norak asik lai sinyarang maiman bagi. Nah enako teka syakok dugo sabotong. Hello.
5: Hello, darano belai kino dibor kaham dara koto.
0: Dibor kaham.
5: Narang mokok tang-tang ta salah ni kol karmani.
0: Sadi, sadi.
5: Hari punawa sekamuri rumjak semua atu kiri
0: rumjak
5: ayo oleh cala yo ini cala yo hamil cara
0: wah ni semua atu kiri rumjak pasai pegat ayo ni neng tu hingga belai kena toka bridges
5: belai
0: aw kau pun mari kising kami kami ni kogo aw ni semua Sekamuri ni kogro kasai payo. Sengkuru sengmani kogro. Hei, di mana? Aau. Hake, kami omohaino. Nadi, the city has building ni shau. But the village has skies. The city has noise, but the village has music. Naikradi. Aau, doli ohunga hanke building tongo. Fiaba, kami ohunga hanke nokha tongo. Doli wo, jiru mokrok ni korang khana wo, fiaba, kami wo hongka hongke, omhoi music khana to tok seneng khana nai. Naik rasidi, asik lainai kami, 치니 감이 아 감이 오노 쓰라이로 프로 등라이마니 치니 가오 무이토 동록마니 저라 나하고 하게 빠이는 오고 나에는 꼭 두고 사보통피 헬로 등미만리야 등미만리야 응케 아오 가봉네 마리키싱 무스강니 사살로 흥강케 치니 꼭고 토마통나이 치니 후쿠무 너는 부쿠구 사파이네 아 치니 후쿠무 노트이 너럭 세이만마요 꼭당 꼭러프 승티니오토 아니 카미노트이 럽사위생 슬레게 하야디바 이렇게 아우 저라 파이노노 응이정카 나이네 피어는 사보통 올라흥강게 카하미양 마냐이 악마 살리야 나이는 사보통 헬로
6: 헬로
0: 디폴 카함 디폴 카함
6: 안양 고엠
0: 메스 고엠 박리샨 사디에샨
6: 이니시니 카민 니 카미니 안나다라 예 다르바 파레 파랑 하지나 니 카밀레
0: 나이스 Hello.
7: Hello.
0: Hello.
7: Jibar Kahamdara.

0: आओ खबर मारेगी नरक खाई दंग नरक हमजाक मिनी खादों मापा आओ नाइन एन हाइक जरा कक दुगो सबत नाइन एगार हेलो
1: हेलो
0: दीपर कहम
1: चंद्र पारानी रविन्द्र
0: देवरुमा सादी रविन्द्र
1: दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए मामा उपनंद मामा अमृत दाद ब्रिजेस इनके बाय अंजलि इनका बाय खा कहाम इनका बाय कनिका इनका दा बिश्राय इनका दा पिजोस इनके जारा सिने एफएम उज्जैन तो खाना चौंगाई जोतनी बागन्यो सिने एफएम या खरे बदल जोतनी बागन्यो इनका नंग बतौंगाई जारा ये आप ना इनका आस नंग सिटिंग जारा
0: आओ दिल किया करे जब किसी को ना जोली किशोर कुमार नी खरांगो खाना दी है के रविंद्र निन खाना तब सामने सामू
1: हम भाई जरा

0: कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।
1: Bin bagai nongar sistem orang samun.

0: किसिन नरखनाय तंग 4.0 मेगाहर्ज एफएम उजोइन तो नरकनि हमजाकमा चिनि खातुमा आउ नरक बो नरकनि खनातक जामनि रसम रखनानन बागिने करन खर जांबाय 03812326253 कोगदु नम्बरनि बिसिंते 99 हाके कोगदु स्वागतम हेलो
1: हेलो तारानो बेलाइ किनोति बरकाहाम
0: आउ दीपरकाहाम
1: अन्नोनि ताकु क्वार्टलानि दिरिसा
0: बेलाइ हामबाय
1: आनो रसामुं खनारे दि तेरे नाम
0: तेरे नाम
1: I see.
0: खनादि ब्रिजेस नों खनादक जामनि रसामुं दो

0: परिणाम फिल्मले रसामुङ खनालाख्या उदित नारायण ताय अल्कायाक्निनी खरांग नयन हेके अजर ककडुगो स्वागतम्पी हेलो सादी लामसुगो दिवर काहाम आओ द सादी
1: फिल्म
0: मूंग सादी
1: हप्ता
0: बबा कक्थाइन सेमलिया ना खाना मुसूम मानी रसामू

0: ही रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसी उद्देश्य से करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बिहार में 29 जिलों में 29 बहुउद्देशीय हाईटेक परीक्षा भवन बनाए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित परीक्षा सुविधा उपलब्ध कराने तथा विद्यालयों में पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने में सुविधा होगी। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि वे शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह जापान के आईची नागोया में पालोमा मिजुहो स्टेडियम में चल रहा है। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और निशानेबाजी में मनु भाकर भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

डिस्ट्रिक्ट साबरकांठा से इस गीत की फरमाइश भेजी विनोद भाई बी वाघेला ने, और इसी गीत को सुनना चाहते थे छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव। और ये पत्र आया श्रॉफ रोड राजकोट सौराष्ट्र से जुबैदा खातून, रुबीना हीना, नूर मोहम्मद लखानी, सिराज और विहान लखानी की ये फरमाइश थी। और प्रमिला गंज आलोट के हमारे श्रोता हैं रतलाम के, मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, अतुल पायल, अतुल कुमार पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इस पत्र को भेजा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं अर्पा पैरी, पार्वती, राधा भगवान और शिव चंद्राकर। आपने सुना था दो रास्ते फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी।

आसपास फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और गीतकार आनंद बख्शी थे। ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार और हिमांशु, और कालेगांव जाफराबाद की ये फरमाइश है सुधाकर राजे, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित मुताला के हमारे श्रोता हैं प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करडा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख की यह फरमाइश है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी सदस्य और इसी गीत को सुनना चाहते थे। अम्बेडकर नगर अकोले के हमारे श्रोता प्रकाश खेलकर, मीरा ताई खेलकर, आरती संतोष खेलकर, पूजा खेलकर और इनके परिवार के सभी सदस्य। श्रोता विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म अमानत में मोहम्मद रफी की आवाज साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये हमारे श्रोता हैं शाहनगर करवीर जिला कोल्हापुर के बाजीराव ढेरे, संगीता और हर्षद ढेरे, और इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजे गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन होशियारपुर जालंधर रोड से रमाकांत शर्मा, रवि शर्मा, अक्षय शर्मा। और ये पत्र आया वरोड़ा चंद्रापुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी, रोहित और प्रणीत की ये फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते थे राजावत कॉम्प्लेक्स से शाजापुर के हमारे श्रोता हैं ये मनमोहन राजावत, मधु राशि, चित्रंजन, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, स्वीटी, रिया, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, मनीषा चौधरी, ये हमारे कोलकाता के श्रोता हैं।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आनंद बख्शी की रचना आप सुन रहे थे। बाबुलगांव महाराष्ट्र के हमारे श्रोता इस गीत को इन्होंने पसंद किया था। प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति तृप्ति, यशोदीप की यह फरमाइश है। और दूधसागर मार्ग राजकोट के साजिद कुतुबुद्दीन मकसूद शाहीन चाणक्या ने फरमाइश भेजी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुचा सिंह ने इस गीत को सुनना चाहा। जिला लुधियाना के हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष बिट्टू, दीपक और इसी गीत को सुनना चाहते थे। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार के ही हमारे श्रोता है डॉक्टर डब्लू, डॉक्टर सोनम और दानिश अंसारी। सलीमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी ने इस गीत को सुनना चाहा। और जेल रोड दिल्ली के हमारे श्रोता हैं लाल बाबू, दीवाना और दिव्या भारती।

गोला बाजार बक्सर के हमारे श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुष और सांगवी की ये फरमाइश थी। खांजीपीर उदयपुर के हमारे श्रोता डॉक्टर निदा, नाहिद फरीदा, जब्बार मोहम्मद, अशरफ खान, मंजू निमी, थाना रोड बक्सर से इस गीत को पसंद किया। आशीष, सतीश और आयुष ने और लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, खर्चे, ललिता, नारायण, गणेश और संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी की फरमाइश है ये।

विश्वेश्वर शर्मा का लिखा है ये नगमा, आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें थी, आत्मा राम फिल्म का ये गीत था श्रोता, और यही है आज के मंच है गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम में सहयोग मिला योगिता जाधव और धनाश्री साठे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले, और अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार, लेकिन भेजते रहिए अपने पत्र, क्योंकि आपके पत्रों का हमें भी रहता है कार्यक्रम के लिए इंतजार। मनचाही गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

नाट्य तरंग, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता, इसका पहला भाग। ये महाकवि भास के संस्कृत

0: नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृत्त वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासव दत्ता की प्रणय गाथा की ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासव दत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासव दत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महामात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासव दत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासव दत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है, भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासव दत्ता।

0: महामहती योगेंद्रायण कैसा बने ये हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी चलते चलते थक गई हूं मैं ये दिन फिर देखना थे हमें
1: आर्या वासव दत्ता चिंतित न हो
0: आर्य कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र सोच कर कांप उठती हूँ इधर आर्य पुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव कौशाम्बी के राज महलों को त्याग लावाना ग्राम में राज परिवार का निवास
1: और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वन गमन उधर लावाणक ग्राम में भयानक
0: नहीं नहीं नहीं महामात्य उसे याद न दिलाए सिहर जाती हूँ उसे याद कर आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया आप ना होते तो क्या होता मेरा अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं
1: हमें अपना करणी करना है देवी वासव दत्ता मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे
0: हाँ यही हो महामाती योगेंद्रायण
1: यही होगा देवी यही होगा देवी स्मरण है ना आपको मेरी प्रतिज्ञा जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे मैं इसी तापस्वेश में रहूंगा और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी
0: आर्य आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी
1: तो देवी अब से मैं महाआमात्य योगेंद्रायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है
0: हाँ मैं इसे याद रखूंगी
1: वहां सामने देखिए जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं

0: चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है। यहाँ व्यवस्थित अरण्यावली है।
1: हाँ?
0: मुझे लगता है वहाँ तपोवन है, क्यों न हम वहाँ चले।
1: हाँ आर्य, यही उचित होगा, चलिए।
0: यहाँ भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनीय और वलकलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
2: मार छोड़ें, ए आर्या, हट जाएं, मार छोड़ दें।
1: आर्य गंगराय, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा
2: रहा है? मार छोड़ दें।
1: देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान।
0: धैर्य धैर्य देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजय होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है।
2: मार छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार छोड़ दे।
3: संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ।
4: आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं।
5: जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा।
0: ये कंचुकी क्या अनुमान है? देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चले। आर्य कंचुकी
4: जी,
0: आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है?
4: तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है।
0: अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधु को देखकर मेरे मन में ममत्व सा जागृत हो रहा है।
6: राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें।
7: स्वागत है राजकुमारी।
8: स्वागत है राजकुमारी।
7: आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें।
8: आयुष्मान हूँ, ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है।
7: इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य। बहुत सुंदर आश्रम है ये, कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ।
6: इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए।
7: हाँ?
8: कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगधराज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा।
6: उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है।
1: उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई।
7: आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी,
4: राजकुमारी की जो इच्छा।
3: आश्रम के तापसजन सुने, मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं।
0: आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है।
7: अवश्य मांगे, मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा।
8: इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला निश्चय ही कोई आगंतुक है।
4: बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं।
0: राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में है। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें।

0: आप इनका परिपालन करें। परिपालन देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं।
1: फिर क्या चाहते हैं आप?
0: आपने धर्म प्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती है।
2: चरित्र रक्षा? क्या चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है, धन प्राण और यहाँ तक के तब भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन धाती की रक्षा?
1: आर्य कंचु की घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहे वही संपन्न हो।
2: जो आ गया राजकुमारी जी।
0: अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती, जाओ अवंती की देवी के समीप जाओ।
1: आह, कैसा सुंदर मुख है इसका। चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो।
3: आर्य, लगता मुझे भी यही है, इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं।
1: आओ अवंती के, हमारे साथ चलो।
0: एक भार उतरा, जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था कि वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीत कर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता।
4: बहुत थक गया हूं, मध्यान्ह हो रहा है, पर विश्राम कहां करूं? कहां जाऊं, किधर जाऊं? अरे, ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरण और गायों के दल घूम रहे हैं, फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलो देखूं।
5: ब्रह्मचारी पधारें।
2: आश्रम सबका समान रूप से होता है। हम आपसे पहले यहां आए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान। लीजिए, शीतल जल ग्रहण करें।
4: धन्यवाद। अब थकान दूर हुई।
2: अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती।
1: प्रणाम।
4: आयुष्मान भव।
2: ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका।
1: प्रणाम।
2: और ये इनके भाई।
0: प्रणाम मुनिवर।
2: और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी।
1: प्रणाम मुनिवर।
4: आयुष्मान भव।
0: ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे, निवास स्थान कहां है आपका?
4: मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्सदेश के लावणक ग्राम में रहता था।
0: अध्ययन समाप्त हुआ?
4: नहीं तपस्विन, नहीं।
0: नहीं? फिर वहां से चले आने का प्रयोजन?
4: वहां एक दुखद घटना घटी।
0: वो क्या?
4: वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे।
1: स्वामी,
4: अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी।
1: मेरे स्वामी,
4: जब राजा अन्यत्र आंखें खेलने गए, तब गांव

0: और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े।
1: क्या
2: अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर?
0: फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका।
1: अपने प्रति आर्य पुत्र का असीम प्रेम जानती हूँ, उसी के बल आज जीवित हूँ। आज भी उनके प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में।

0: फिर महाराज उदय रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित है।
1: राजकुमारी पद्मावती आर्या अवंतिका विलाप कर रही है।
2: क्या बात है अवंती की?
3: ना रो अवंती की, राजकुमारी मेरी ये भगनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारिणी, फिर क्या हुआ?
0: फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ।
1: प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है, उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था।
0: लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और
4: हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, वासवदत्ता।

0: देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली।
1: ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया?
0: किया, तपस्वी किया। रुम्नवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे।
2: सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्नवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं?
0: इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा।
3: यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा। यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई?
0: इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके।
1: फिर
0: जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं।
4: जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है।
2: क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चीटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है।
0: अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष।
4: प्रणाम मुनिवर।
1: अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी देवी पद्मावती।

0: से जाने की अनुमति चाहूंगा।
1: आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी?
0: नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथों ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंती के।
2: राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी।
3: सांध्य वेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है।
2: सब लोग आश्रम प्रवेश करें।
1: चलो कंचुकी चेटी, चलो।

0: रहे तुम्हारी बहन।
1: अवंती के अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी।
2: खेले राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे।
0: क्या कह रही है चेटी?
1: सुन रही हूँ अवंती के। पर बताओ हमारे यहाँ के राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें?
2: ये राजगृह के महल भी सुंदर है और इस उद्यान की सुंदरता तो बस।
0: क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर अपलक?
2: आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी।
0: रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा।
2: अच्छा अच्छा महासेन की भावी पुत्र वधु, मैं चुप होती हूँ।
0: ये महासेन कौन है?
2: नहीं जानती। उज्जैन के राजा प्रद्योत, असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया।
0: लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती।
2: तब किसके साथ चाहती है आर्य चेठी?
0: ये चाहती है वत्सराज उदयन को।
2: वत्सराज?
0: कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है।
2: मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं,
0: क्या क्या हो देवी?
2: कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों?
0: वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं।
2: जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप गुण।
0: अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो?
2: नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं।
0: अवंती के, तुम उन्हें कैसे जानती हो?
2: मैं नहीं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं।
0: ओह, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं।
3: कुमारी पद्मावती की जय हो।
0: कुमारी आपके मंगनी हो गई।
2: मंगनी हो गई?
3: बधाई हो राजकुमारी।
2: आहो धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की?
0: वत्सराज उदयन के साथ।
2: क्या, वत्सराज के साथ? कहाँ, कैसे? वे कुशल पूर्वक तो है?
0: हाँ, वे कुशल पूर्वक है अवंती के। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है।
2: क्या क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया?
0: नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य ज्ञान वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है।
2: ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। मेरा मन भी यही कहता है।
3: ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।

0: विवाह मंडप में छोड़, मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है आर्यपुत्र, वे भी अब पराए हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देख भर लेने की मनोरथ से ही।
1: आर्या अवंतिका जाने कहां गई। ओ, प्रियंगी लता के नीचे शिला पट पर बैठी है। अरे कितने देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ।
0: किस लिए चेटी?
1: राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। लीजिए फूलों की टोकनी।
0: हाय, मुझे ये करना होगा, भाग्य भी कितना निष्ठुर है।
1: अरे क्या सोच रही है, जा माता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे।
0: ठहरो चेटी। अच्छा ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं?
1: ऐसे हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा।
0: कहना क्या सुंदर है।
1: धनुष बाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं।
0: अच्छा अब बस भी करो।
1: अरे क्यों रुक रही है मुझे,
0: पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना।
1: अच्छा शीघ्र माला गुण पे,
0: यही तो कर रही हूँ।
2: अच्छा चेटी बताओ इस फूल का क्या नाम है?
3: अविधवाकरण।
2: अविधवाकरण? जानती है इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती।
0: तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी।
2: और इसे क्या कहते हैं?
3: सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डहाने वाली।
0: नहीं इसे नहीं गूंथना है।
3: क्यों
0: चेटी, राजा की पूर्व पत्नी वासवदत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन।
4: जल्दी करें आर्ये, जल्दी करें, सुहागिने जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही है।
0: हाँ हाँ, ये माला तैयार है।
3: अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तुम्हें चलिए।

स्वप्न वासव दत्ता। अभी आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। ये नाटक आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे

0: जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा सेठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
0: जी हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
1: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
0: जी,
1: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
0: जी,
1: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
0: जी।
1: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
0: जी,
1: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हो गई आज।
0: ये आपका बड़प्पन है,
1: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
0: जी,
1: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
0: जी। जी
1: तो मैं आई, इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: तो पूर्णिमा जी आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
1: जी, जी।
0: वहां तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई और वहां पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ, क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
1: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
0: अच्छा।
1: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
0: अच्छा।
1: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
0: जी।
1: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ, मन्ना दा के साथ, मन्ना दा जी के साथ।
0: अच्छा।
1: आए मन्ना डे जी के साथ
0: जी।
1: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी, उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
0: जी
1: उनको असिस्ट किया,
0: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में
1: है
0: जाते हैं।
1: हाँ। जी। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
0: अरे क्या बात,
1: मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
0: जी जी।
1: बस फिर डैडी ने बहुत अपनी खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता
0: जी, जी।
1: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना, वक्त तो बादशाह है पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता डैडी कहीं वहां पीछे रह गए, बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है
0: जी, जी, जी, जी।
1: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
0: जी,
1: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
0: अच्छा।
1: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया, उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल की फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा।
0: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है
1: जी।
0: और जो संगीत प्रेमी है, जो संगीत के रसिक है,

0: जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
1: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
0: जी,
1: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद
1: जी,
0: करते
1: जी,
0: हैं किसी न किसी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, किससे पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो, और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार
1: है ना, संगीतकारों का, और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ,
0: है ना।
1: तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा जैसी
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत
0: और आपसे प्रभावित भी रही है।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया ना।
0: आप ही का गाया वो सुनते
1: जी, बिल्कुल
0: पसंद करके सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी आई ने बताया सब कुछ. एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आई मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी.
1: अच्छा.
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो, इतना एंजॉय करती थी. उन्होंने वो हमेशा कहती थी भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी. और मंदाकिनी जी मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी.
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी.
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे अब घर में जब कोई फंक्शन है कुछ भी दशहरा दिवाली सब मिलते थे क्योंकि आई सबसे बड़ी थी डैडी सबसे बड़े थे तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था. तो बस तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं तो एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी
1: जी.
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी.
1: अच्छा.
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके फिर वो पर्दा हटा के मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी.
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था. तो वो जो गाना चला था ना उड़ के पवन के संग चलूंगी तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी.
1: अच्छा.
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी. लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी.
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी.
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ. थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है. तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में. हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी.
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे. लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967 लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी.
0: पर तुम गाना गाओ.
1: अरे वाह.
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए और मैं भी मान गई. उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे. हाँ,
1: बिल्कुल.
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी
0: थे.
1: और आपको बनना था एक महान गायिका.
0: हो सकता है तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी.
1: बिल्कुल.
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं. बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल. तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने. पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो.
1: अरे वाह, अरे वाह.
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा.
1: अच्छा.
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे. अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी।
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक हाँ। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने पात। तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही है
0: ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती
0: है, ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस, छोड़े ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी।
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगे, ये था खुद नहीं नचाएंगे लेकिन दुनिया को नचाएंगे, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था,
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरे निवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत, सही वक्त,
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा,
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा,
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे, तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे, तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल

0: में उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी
1: क्यों मोर ली,
0: है ना
1: जी जी,
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ने ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ। सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा,
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर्स,
1: जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स, और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
1: जी।
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है, है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सेबेस्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी,
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी,
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो? मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी? तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आई
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए, मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, बस सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे।

0: बच्चे डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था, और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया,
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी,
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल,
0: ये गा के मैं डांस करती थी, और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे, और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदा के नीचे, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए नजराना। ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको तो नजराना,
0: हाँ, एक नजराना देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक,
0: बिल्कुल, और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है, यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता, मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदा के नीचे, अभी एक 10 है ना बुलबुल।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा,
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड।
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा, मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था,
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही। तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा, एक अनोखा। वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई, ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी,
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी, मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ, करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी, मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती।
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता है मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा का कि वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काके की रिकॉर्डिंग्स, कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल, देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
0: जी,
1: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल।
1: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
0: जी,
1: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
0: हाँ,
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे
0: हर जबान,
1: और यही पूरा था ना,
0: हाँ,
1: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस,
0: हाँ,
1: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
0: जी,
1: वही पूरा देखिए खेला,
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं पता था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
0: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
1: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी
0: जी।
1: देखिए
0: जी,
1: ये वक्त का खेला
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तो
0: कि वक्त ही है जो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारी पहचान बनाता है
1: उसके आगे
0: या हमारी पहचान मिटा देता है।
1: एकदम।
0: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ, बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
0: जी।
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला।
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका

0: ये मैं इतना गाती थी सालों बाद. ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं
1: जी हूं. बिल्कुल बिल्कुल.
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया. देखिए आप देख रही हैं,
1: समय खुद को दोहराता है किस रूप में.
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी. ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम.
1: बहुत बहुत.
0: ये वक्त का खेला ये होता है.
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कहां कहां जोड़ता है
0: ना.
1: बिल्कुल.
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत. ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे. तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
3: बॉम्बे टॉकीज
4: साइंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन.

0: देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा।
4: एतकुन शुंदुन বিবিধ ভারতীর রাষ্ট্রীয় সেবার অনুষ্ঠান আকাশবাণী বিলোনিয়া। একটু পরে শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ, এরপরে শুনবেন ইংরেজি সংবাদ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हम

0: मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर चार लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said in recent years the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. Prime Minister Modi said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth.

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: इस प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
4: কৃষকের হাসি দেশের সমৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য কৃষক পরিবার বছরে 6000 টাকা আর্থিক সহায়তা পান তিনটি সমান কিস্তিতে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই সহায়তা কৃষিকাজে নতুন উদ্দীপনা এনে দেয় এখনো নিবন্ধন না করে থাকলে আজই নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টার বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুন বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.pmkishan.gov.in সচ্ছল কৃষক সমৃদ্ধ ভারত প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি কৃষকের পাশে উন্নয়নের পথে

लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है. आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा, तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए, तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे. तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई,

0: साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
1: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
0: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you,

0: from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वर्ल्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा

0: चर्चा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेक बॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेक बॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी, अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टेमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम

0: टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरम साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी है। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशु भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।